किया जाएगा। ये प्रोपेगंडा शुरू कहां से होता है, बिल्कुल झूठ पर मबनी एक बात आम कैसे हो जाती है? उसकी वजह यह होती है कि शैतान इंसानों के दिल में दूसरे के बारे में बदगुमानी डालता है। पहले वो गुमान होता है, फिर वो बार बार आने से यकीन बन जाता है, फिर वो यकीन गुफ्तगु बन जाता है, फिर वो गुफ्तगु फैला दी जाती है, फिर वो बहुत सी जबानों पे आकर एक गवाही बन जाती। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इंसान का इम्तिहान लिया जाए। आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि बिल्कुल एक झूठी बात आप पे घड़ के मंसूब कर दी जाए और आम फैला भी दी जाए। ऐसा क्यों होता है? इंसान सोचता, मैंने की नहीं, ये क्यों हो गई? इसकी वजह आजमाइश, कि फिर भी एक शख्स इस रास्ते पर कितना पक्का रहता है, सच्चाई पर कितना कायम रहता है। क्योंकि अगर आपके अंदर इस्तकामत नहीं होगी तो आप जरा सी बात सुन के लोगों की एकदम भड़क उठेंगे और अपना काम छोड़ बैठेंगे। तो जो शख्स लोगों की बातों में आकर, लोगों के प्रोपेगंडे से नाराज होकर हक की राह छोड़ जाता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे बेवजन लोग पसंद नहीं कि उसके दीन का काम करें। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं कि जो हर हाल में उसके दीन पर जमे रहें, हवा मुआफिक हो या मुखालिफ हो, तारीफ मिले या बदतारीफी, कोई साथ दे या दुश्मन बने, कुछ भी कोई करे, जब एक रास्ता हक का है और उसे हक देख के चुन लिया तो फिर उस पे जम जाए। कुल आमंतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकिम, कहो मैं अल्लाह पे ईमान लाया और फिर उस पे जम जा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना रास्ता ना छोड़े, अल्लाह को थामे रखे। वलौ शाअ रब्बुका मा फअलूहु, अगर तेरा रब चाहता तो ये ना कर सकते, यानी ये तेरे रब की मशीयत है। मशीयत क्या होती है? कि अल्लाह उन्हें करने की आजादी दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह उनसे राजी है। मशीयत और रजा में फर्क है। मशीयत का मतलब है कि अल्लाह ने अच्छा काम करने वालों को भी आजादी दी है और गलत काम करने वालों को भी। अगर अल्लाह ताला ये आजादी ना देते तो कैसे पता चलता कौन अच्छा और कौन बुरा? अगर हर शख्स को मजबूर कर दिया जाता कि सिर्फ सच बोले, झूठ बोल ही नहीं सकता, झूठ बोलते ही जबान बाहर निकल आए, तो फिर सच्चों का सच कैसे निखरे और झूठों का झूठ कैसे पता चले? अल्लाह ने अच्छी बात करने की भी इजाजत और रुख्सत और सहूलत दी है और गलत काम करने की भी। फिर हमसे इम्तिहान लिए कि हम कहां इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर फरमाया, अगर तेरा रब चाहता, यानी जबरन उन्हें ना करने दे तो ना कर सकते, ये तेरे रब का फैसला है कि इस तरीके से आजमाइश होगी। फजर हम, आप इनको छोड़ दीजिए, जस्ट इग्नोर, एरास, बस छोड़ दो, आ गई है इधर से निकल जाओ। आप देखें कि जैसे आप जा रहे हैं सड़क के ऊपर, आगे कोई चीज आ गई तो आप गाड़ी मार देंगे उसको? गाड़ी मारने से क्या होगा, आपकी गाड़ी टूट जाएगी। अकलमंदी क्या है? साइड से होकर निकल जाए, थोड़ी स्लो कर लें। ठीक है, आप एक स्पीड पे आ रहे थे, वो स्पीड आपकी खलल अंदाज हुई, आपको गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन हल क्या है? टकराए नहीं उस चीज से, इधर से होके चले जाएं, अपने आप को बचाएं ताकि आप मंजिल तक पहुंच जाएं। अगर आप टकराने लग गए ना तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो गाड़ी को ठीक कराना पड़ जाएगा, वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब ये आंधी उड़ती है, वायरस फैलता है, तो कैच कौन करता है? जिनकी रेजिस्टेंस लो होती। वसवसों का शिकार कौन होते हैं? जिनका अपना ईमान कमजोर होता है, जो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जो अकलमंद लोग होते हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करते, वो किसी के बारे में भी बात सुन के कहते हैं अच्छा जरा मैं खुद तहकीक कर लूं। इसीलिए फरमाया, वलितसगा इलैहि अफइदतुल लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, ताकि मायल हों इस प्रोपेगंडे की तरफ उन लोगों के दिल जो आखरत पे ईमान नहीं लाते। ऐसी फजूल बातें किसको भली लगती हैं, कौन कबूल करता है, कौन उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, कौन उन पर यकीन कर लेता है, कौन मान जाता है? जो आखिरत को नहीं मानता, जिसको इस बात का खौफ नहीं कि अल्लाह ने पूछना है कि हर सुनी सुनाई बात को क्यों मान लिया था। किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करने लगे बगैर तहकीक के, और उस पर एक्शन करने लगे इंसान।
تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جب کمزوری ہو جاتی ہے دل میں، ایمان کمزور ہوتا ہے، حساب کا یقین نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں پھنسنے لگتا ہے۔ شوشے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ شوشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو کوئی سائٹ کا اس کا ایسا پہلو نکال لینا۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو اس طرح نظر آئے گی، تو آپ یہ بھول جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مثال کیا ہے، آپ کہیں اچھا تصویر کھچوانا جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، یعنی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے، اس وقت کوئی اور بات کی جا رہی، اور تصویر سے مراد صرف کسی جانداری کی تصویر تو نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ ہر شخص اپنے دماغ کے مطابق چیزیں لیتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق، سیدھی یا الٹی۔ تو میں نے بتایا نا کہ جس طرف سے کوئی دیکھتا ہے اسی طرح کی چیز نظر آتی، تو ایسے میں شوشہ پرداز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو سنجیدہ حقائق پہ غور نہیں کرتے، جنہیں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ فضول پروپیگنڈے کرنے بھی پسند کرتے ہیں، سننے بھی پسند کرتے ہیں، وہ کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ اسی شغل میں مصروف رہتے ہیں کہ واٹس نیو، وہ ہر نئی بات کے تلاش میں ہوتے ہیں، اچھا کوئی اور نیا شوشہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی خبر۔ فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہ ایسے شر سے صرف پناہ

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हाँ, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, K Electric और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की ताबून से पेश किया जा रहा है।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

बलि जवाब खंजर जवार कर एक जनो कतल जवाब दारन घर बारा बीठल 47 साल लुत्फ अली के खंजरन जा वार करे कतल कयो लाश अस्पताल मुंतकल पुलिस मौजब वाकियो जाती दुश्मनी लगी रहा है मामले की जांच शुरू कर छदी है। भान सैदाबाद में आबादगारन जो पानी कोट खिलाफ धरनो भान माइनर लनी शाह के कुशली के आबादगारन पीर शाह पोरी वर धरनो है आबादगारन चौथा पासी खाते जमलदार पानी विक्रो कन पा पानी फराम करे परेशानी खत्म कई वने

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।
3: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 3135525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला है। तो टॉपिक देखा जाए तो आज गर्मी को देखकर, वैसे आज भी मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से गर्मी का एक सवाल पूछा जाए। गर्मी में जब भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हूँ तो भैया मैं ऐसा लग रहा है कि भाई अलग रहा है करीब जो है ना सांप चालो करे वेंदासी चौदह गर्मी ऐसा का कुछ बर्दाश्त ही ना आए देंगे। और आजकल लाड़काना में तो भाई, वैसे आप ही बताइएगा आपके यहाँ टेम्परेचर क्या चल रहा है। लाड़काना में तो भाई शदीद वाली गर्मी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछना है कि आप मुझे बताएं कि गर्मियों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो कौन से काम है, जो खवातीन किचन में बैठ कर काम करती है, खाना बनाती है, या फिर वो लोग जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इन दोनों सूरतों में आपको क्या लगता है कि कौन सी जगह है वो ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खतरनाक है, वो खवातीन जो किचन में खाना बनाती हैं या वो लोग जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। देखा जाए तो दोनों चीजें अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि भाई दोनों जो चीजें ना वो वाकई ये जगह जो ना बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन आज आप मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है ज्यादा आपका वोट किसकी तरफ जाने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम कैसे बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए RK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप लिखते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप जैसे ही आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है जिसका नाम है व्हाइट HNG स्किन ब्यूटी शो। लाइव पोस्ट होगी, लाइव पोस्ट को आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए और जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए ताकि पता चले कि आप ही हमारे साथ मौजूद हैं और हाँ जी एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए रेडी हेडी हैं। ओके, सो आज आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सी जगह डेंजरस है, वो खवातीन जो कि किचन में खाना बनाती हैं, वो जगह यानी कि अगर खवातीन हो या मर्द हसरात हो, किचन में खाना जो भी लोग बनाते हैं उनको पता होता है कि भाई किचन में खड़े होकर खाना बनाना कितना एक मुश्किल काम होता है, खास करके दोपहर के टाइम में। और उन लोगों को भी पता होता है जो लोग दोपहर के टाइम में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो ये दोनों जगह जो है, ये दोनों सूरत हाल जो है, आप क्या लगता है आपको कौन सी जो जगह है वो ज्यादा खतरनाक है, कौन सी जगह ज्यादा डेंजरस है। और इसी के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये चीज गलत नहीं होगी, क्योंकि भाई प्रोग्राम आप लोगों तक व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एश की लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है। व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम लगाते हैं तो व्हाइट एश की लवली क्रीम आप दिन के टाइम लगाते हैं। और इसके अलावा व्हाइट एश का आपको फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ तैयार शुदा है। उसके साथ व्हाइट एश का आपको साबुन भी मिल रहा है, जो लोग साबुन लगाते हैं वो साबुन लगाएंगे, जो लोग फेस वॉश लगाते हैं वो फेस वॉश लगाएंगे। और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी क्लियर ट्यूब मिल रहा है, जो कि एंटी एक्नी ट्यूब है डॉक्टर पिंपल नाम से, वो भी व्हाइट एश वालों का है। और उसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन भी है और व्हाइट एज का लोशन भी है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, नहीं मिल रहे आपके एरिया में तो आप डायल कर रहे हैं 03-1579-0595 के नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, और होने भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। और ये आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं खुश हैं सिद्रा जी जी। तमाम बधाई कहते हैं कि ना दुनिया में सिर्फ नाकाम मानू ही अवान जा मुखालिफ हुंदा, बाकी कामयाब मानू वट कहीं जा ए बगण जितरो टाइम ही ना होंद। बिल्कुल या तमाम सही गाल कई जी, वांदा हुंदा ना वे ये कम कंदा आई। तमाम लिंक शेयर कई मैं कोशिश कदम में तुम गानो हलाइंदी। आशिक अली जलबाणी भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारा आपने दिलियों वाला मैसेज कर दिया है, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक है, आप बताए हिदायतुल्लाह कैसे हैं। इमरान खान रुख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चाचा खालिद कहते हैं अच्छा आजा चलें, कहते हैं कि जब तुम आती हो सब कुछ, सब गिले शिकवे भूल कर तुम्हारे साथ शामिल हो जाते हैं, सब कुछ भूल कर। क्या मतलब, आपको मुझसे भी गिले शिकवे हैं? इतनी प्यारी कुड़ी से कोई कैसे गिले शिकवे कर सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। वेल आप हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर टाइम की जाने मेरी नजर पड़ी तो टाइम हुआ जाता है, जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों

0: पास आते हैं और आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक आए तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. आप सुन रहे हैं जनाब
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा,
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream.

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार तक ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: से आप लोगों के पास, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो यहाँ पर जरा आप लोगों को बताया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, और बताया इसलिए जाता है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि जब आप मार्केट जाएं और परचेज करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को ये चीज जहनों में हो कि आप परचेज क्यों कर रहे हैं। अक्सर तौर पर देखा जाता है कि आप लोगों को खूबसूरती के मामले में ना जो भी चीज बताई जाती है बस आप लगा लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज बताई जाए कि भाई आपके चेहरे पर दाने हैं, फला वाला प्रोडक्ट लगा लो और फला वाली क्रीम लगा लो, मैंने लगाई थी मुझे फर्क मिल गया है, अगर इस तरह का कोई काम करता है ना, इस तरह अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी स्किन पे दाने निकले या ये चीज है, ये मसला है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट लगा ले, मैंने लगाया था मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये चीज भी आप याद रखा करें कि हर किसी की स्किन जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है। तो अगर उसको उस प्रोडक्ट ने फायदा दिया तो जाहिर सी बात नहीं कि वो भाई आपको भी फायदा दे। तो अगर आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, तो वो आप सारे लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी प्रोडक्ट आपको कोई भी बता दे कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है आप लगा ले, और आप लगाने लग जाते हैं बाद में आपके चेहरे पर जो मसाइल है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखा जाए तो थोड़ी सी आप भी ना अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करें और थोड़ा सा जो है ना वो इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करें कि आपने जो चीजें अप्लाई करनी है वो एक तो ये बात कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए, दूसरी बात ये कि वो नेचुरल अज्जा से तैयार शुदा हो, जिनके अंदर ऐसी चीजें ऐड की गई हो, ऐसी चीजें शामिल की गई हो जो कि आप लोगों की स्किन के लिए वाकई फायदेमंद साबित हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी बताए तो बस

ऑरेंज की जो ब्यूटी क्रीम है ये आपके चेहरे पर जो है ना फ्रेश लुक लाती है, आपके चेहरे की स्किन को फेयर बनाती है, आपके चेहरे पर जो है ना साइड इफेक्ट्स अगर काफी ज्यादा आते हैं तो उनको आपके स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है, आप रात के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे जनाब व्हाइट एज का ब्यूटी सोप। अगर आप सोप लगाते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइट एज का फेस वॉश लगाएंगे जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है। सोप जो है वो तो भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार शुदा है, बाकी अगर हम फेस वॉश की बात करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी है, यानी कि वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो जो लोग भाई वाकई नेचुरल चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स। ये तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के हिसाब से तैयार किए गए हैं और आपकी स्किन के हिसाब से तैयार किए गए हैं। और साथ में अगर आप गर्मियों का देखा जाए तो भाई अच्छा खासा सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम मेकअप भी नहीं लगा पाते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट हम तलाश करते हैं जो कि भाई हम लगाएं तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो भी करती रहे, आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहे। अगर आप धूप में जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज या फिर पढ़ाते हैं, ये तमाम तर जो बातें होती है ना देखा जाए तो उसमें भी आप लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डेली बेसिस पर आप इस्तेमाल करें और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, तो आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना ये जनाब रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार शुदा है जिसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल डाले गए ताकि आप लोगों की स्किन पर जो रिजल्ट्स मिले आपको बहुत ही शानदार मिले। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। सनस्क्रीन का ऐड करना जो है ना वो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए क्योंकि अक्सर हम जो है ना फेयरनेस कोई भी क्रीम लगा लेते हैं तो फेयरनेस क्रीम लगाना काफी नहीं होता, अगर आप डेली बेसिस पर कहीं कोई काम करते हैं तो उस सूरत में सनस्क्रीन भी आपकी स्किन के ऊपर लगाना जरूरी होती है। तो जो लोग ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं लगा पाते हैं या जिनको नहीं पता कि भाई दोनों चीजें कैसे कैरी की जाती हैं, कौन सा सनब्लॉक हमें लगाना चाहिए, तो उस सारी चीजों का जो है ना हल यही है कि बस आप व्हाइट एज की लवली क्रीम एक बस क्रीम परचेज करेंगे, उसके अंदर ही आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं और फिर अपनी स्किन को खूबसूरत होता हुआ देख सकते हैं। व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि आप दिन के टाइम भी लगा सकते हैं, रात के टाइम भी लगा सकते हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ईद आ रही है तो भाई ईद पर भी लगा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं अच्छे से, और लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। इतना इसके अंदर ना शिमरी सा इफेक्ट है, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शाइनी शाइनी हो जाता है आपकी फेस कि आपको ये लगता है कि भाई हम तो ग्लो कर रहे हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या लगाया आपने कि आपका फेस इतना चमक रहा है, ये जी व्हाइट एज की लवली क्रीम होने वाली है। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लड़के लड़कियां सभी लगाइए, अपना फेस वॉश करके अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, उसके बाद आप व्हाइट एज की लवली क्रीम अप्लाई करें। दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं। तो लगाइए जी और खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां जो है ना वो बांटते रहिए। और इसी के साथ साथ जो है ना ये तमाम प्रोडक्ट्स आप इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं और डायल कीजिए 03-15-799-0595, ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। तो अवेलेबल कराते जाइए और जनाब खूबसूरत होते जाइए। और उसके साथ साथ मैंने बाकी आज आप लोगों से जो सवाल पूछा है उसको जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। और टॉपिक मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि गर्मी में सबसे ज्यादा डेंजरस जगह आपको कौन सी लगती है, वो जगह जहां पर लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं या फिर वो जो ज्यादातर लोग किचन में दोपहर के वक्त खाना बनाते हैं, क्योंकि ये दो काम ऐसे हैं मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों काम, अगर आप इन दोनों सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से, ये दोनों जगहें बड़ी डेंजरस है। और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सी जगह डेंजरस है, ट्रैफिक में फंसना या फिर दोपहर के टाइम पर खाना बनाना। ओके जी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और साथ साथ आप कहां से हमें सुन रहे हैं ये बताते जाइए, और आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो पाले पाले लिसनर्स हैं ये कौन कौन से लिसनर्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जनाब आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं बताइए ना।

ओके जी, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आप ट्रैक सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस की जाने बातें, आपके कमेंट्स की जाने बातें, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा चाचा, आपने लिखा है आज हो सके तो राहत फतेह अली खान का ये वाला गाना लगाए, ये तो थोड़ा इंडियन है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंडियन है। कोई और गाना सुनाते हैं, ठीक है, राहत फतेह अली खान का, या फिर आप ही बताएं कौन सा गाना सुनेंगे। और कहते हैं अल्लाह ना करे, चलिए बस ऐसे ही आप दुआ में याद रखा करें, मुझे फिर क्या ही होने वाला है। और उसके अलावा हेंजी हिदायतुल्लाह कहते, वैसे सिद्रा बदीन में तो रात में इतनी सर्दी होती है, मैं तो अच्छा सर्दी है क्या बात है, थोड़ी इधर भी भेजिए जरा। चाचा कहते कराची में गर्मी कम कम बादल हैं, कराची आ जाओ चाचा के पास ईद करने। अब तो भाई ईद बहुत करीब आ गई है, अब तो कहीं नहीं जाने वाली मैं, बस घर पर ही करेंगे। वैसे गर्मी जब भी मतलब है ना, गर्मी का एहसास जब भी मुझे होता है, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है ना, मैं इतना गुस्सा करने लग जाती हूँ, मैं मतलब लड़ने लग जाती हूँ लोगों से। तो ये बात है, मुझे पता नहीं क्यों गर्मी में ना मतलब मैं अजीब ही हो जाती हूँ, मेरे अंदर ऐसा इंसान जिंदा हो जाता है। शायद किसी ने नहीं देखा हो, आप लोगों ने तो नहीं देखा, बाकी घर वालों को पता है कि गर्मी में मैं कितनी बेजार हो जाती हूँ। तो गर्मी जब भी आती है तो मेरे घर वाले मुझसे थोड़ा दूर भागते हैं कि नहीं भाई गाना फजूल आए थे।

लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आपके एरिया में मिलनी चाहिए ना, ये बड़ी सीधी सी और कॉमन सी बात है कि आपके एरिया में मिलने चाहिए। हाँ जी मिलने चाहिए, तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आपके आसानी के लिए है, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595।

चंद भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो, दूर से सुनियो आ चुके हैं समंदर पार से हमें सुन रहे हैं। अच्छा कहते हैं अदी सिद्रा गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन आमीन, सारे बोलिए आमीन। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ नूरी संतोनियो भाई दोबारा, कहते अदी गाने के रिक्वेस्ट है। अच्छा डेडिकेशन सेंड करिए स्पेशली आप ईशान और हदीसा आसिम चाचा खालिद एंड नायाब के नाम, ठीक हो गया जी। और पोइट्री लिखते हैं कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, कुछ लोग दिल पर जख्म छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। वाह वाह। अच्छा आदल लिखते हैं कि ना वो वक्त रहा, ना वो शौक रहे, ना वो जिद रही, ना वो हम रहे, वक्त के साथ ऐसा ही हो जाता है, मतलब इन जो सबूत यो आता हाँ ऐसा वड़ा थी आयो मैच्योर हो चुके हैं। कश्यप खान हमारे साथ कहती है सलाम अलैकुम सिडो, मैं पैनल वाली कश्यप नहीं हूँ, मैं आपकी पुरानी वाली कश्यप हूँ, हाँ यूनिवर्सिटी में बिजी थी और अब वेकेशन में आपके साथ साथ रहूंगी, चलिए मेरी जान आपको वेलकम करते हैं वापसी पर।

क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए. व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम जो कि एलोवेरा, एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है, और साथ में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप नाइट क्रीम नहीं इस्तेमाल करते हैं वैसे करके तो देखिए बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम मौजूद है जो कि फेयरनेस फार्मूला है जनाब, फेयरनेस क्रीम जो कि आप इजीली लगा सकते हैं, हर उम्र का इंसान लगा सकता है, लड़के लड़कियां सब ही लगा सकते हैं, तो लगाइए और खूबसूरत रहिए.

100% तुनियो भाई लगते हैं। यदि मैं यहाँ से वापस जाकर लवली का जलवा जरूर परचेज करूंगा भाई का, आपसे प्रॉमिस। भाई आपने तो इसका नाम ही ये रख लिया है, लवली का जलवा। ऐसा ना हो दुकानदार को जाके बोलिए हमें लवली का जलवा दे, नहीं बाबा आप उन्हें बोलिएगा व्हाइट एज की लवली क्रीम दे दें, सही है, ताकि दुकानदार के खबर पे तो छा वठन आए हो। अच्छा ये अनवर भाई, वालेकुम असलम।

0: किशोर भाई कहते हेलो हाय, हम भी अच गया आदि, वेलकम वेलकम अदा। अनवर भाई कहते असांजा गम घटाइण वारी भेण ऐं लाड़काणो FM 88 जी क्वीन कहिड़ा हाल अथव, माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम करे रहिया आहियो। शमन जो कलाम अच्छा चले गानो, वैसे तुम थोड़ो बुधायो तो केड़ो गानो बुधन चाहियो था शमन जो, उनका अलावा बिल्कुल गर्मी में तमा के मजेदार गाना बुधराइंदासी, जे तमा के गर्मी जो थोड़ो एहसास जो है घट महसूस थे। हाँ मां भला भला गाना आ रहा थी, वाकई मुख्य लगे तो थोड़ी गर्मी घट जी गई। हाँ जी लॉजिक तलाश मत कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारी। किशोर भाई कहते अदि आज मेरा मूड सही नहीं है, चुप भला छा तू तो। कश्यप कहती है टॉपिक आंसर किचन में तो फिर भी धूप नहीं होती, मुझे ट्रैफिक में फंस जाना बहुत मुश्किल लगता है, बुरी हालत हो जाती है बाइक पर। हाँ मेरा भी तकरीबन वो जो है ना वो ट्रैफिक में फंसने वाले लोगों की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल जगह होती है जहाँ पर अगर हम दोपहर के टाइम पर फंस जाते हैं और फिर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है, तब थोड़ा सा लगता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस जगह है। अच्छा चाचा कहते हैं शिमरी साइड इफेक्ट नहीं, शिमरी सिर्फ इफेक्ट है, शिमरी इफेक्ट उसे बोलते हैं जो कि मतलब सोली सिंधी में तक बुधा ना जी मायू डिस्को हणंदी ना फेस से, डिस्को डिस्को मतलब घणो डिस्को न, मतलब थोड़ो थोड़ो हल्को हल्को डिस्को हो जे, अगर तुम पाने फेस से लगाईंदा उस समय हूंदा या फिर काथे भी हूंदा मेकअप न कंदा पोइ भी तव्हांजी स्किन जेका न चमकंदी रहंदी, वो सफ़ा घणो वारो डिस्को न सफ़ा थोड़ो थोड़ो डिस्को, जंहिंखे शिमरी चयो आहे, शिमरी इफेक्ट। मुझे मेकअप के बारे में ज्यादा नहीं पता, और क्योंकि मैं ऐसा है कि मैं लड़कियों की तरह मेकअप नहीं करती, इस वजह से मुझे ज्यादा नहीं पता मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं इस बारे में, लेकिन ये बात है जब मैंने व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाई है ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर वाकई शिमरी इफेक्ट भी है और महसूस।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क
0: अमरीका।

0: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर एटीएन न्यूज़।
1: सन्नाटा माण्हुनि जे गाॾियुनि ते ध्यानु कान थो वञे, ख़राब थी रहियो आहे। वज़ीर मार्को रोबियो चयो त ईरान सां कम हले पियो, थी सघे थो त ईरान सां अॼु कंहिं मुआदे ते पहुची वञूं। आमने हुरमस खुलियो पियो वञे ऐं वक़्तु तय करे एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं पयूं वञनि।

0: देखने में ना मजा भी आता है। और अजीब सी एक बात जो है, अगर आप किसी को लड़ते हुए को मना करेंगे ना, वो अपनी लड़ाई छोड़ के ना बीच में आपको भी घसीट लेगा, बंदा या बंदी। ये मैंने लाइफ देखी है चीजें अक्सर और बेशतर। आपकी क्या राय जानने के लिए नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बड़ी जन्नत, कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं नहीं सुनाऊंगी काल
1: मुबारक।
0: अब सारे लिसनर ने ईद की मुबारकें देने शुरू कर देनी है। अभी तो दरमियान में एक दिन है, ईद वाले दिन शो करेंगे, उसमें मुबारकें भेजना। ये बताओ पाकिस्तानी अवाम में लड़ाई किस बात
1: का? आपके सवाल का जवाब है सियासत पर।
0: सियासत
1: पे सुन रहे?
0: अच्छा, चले जी, अल्लाह हाफिज। खवातीन को बोलने का मौका, जो टॉपिक लेके आई हूँ ना उसको फॉलो करना है, वरना मैंने कॉल कट कर देनी है। बात है सीधी, उसूलों पे नो कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: वेलकम कहेंगे भाई। कौन बात कर रहा है?
2: नेमत नवाज बात कर रहा हूँ।
0: खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
2: टॉपिक के बारे में हम ये कह सकेंगे कि खास करके भगवान के बारे में जो है बहुत जगह से।
0: अच्छा, आप अपने मोबाइल का चार्जर दे देते हैं किसी को भी मोबाइल चार्जिंग के लिए?
2: जी जी।
0: तो फिर लड़ाई किस बात की है?
2: आम लोगों में किस किस में होती है?
0: अच्छा देखिए, आपके दोस्त लड़ते हैं कि जो खबरदार मेरे चार्जर को हाथ नहीं लगाना।
2: जी जी।
0: अरे वाह,
2: आप तो कहते हैं हमें हाथ लगाए, मतलब हमें हमारे मोबाइल को हाथ नहीं लगाए।
0: ओ अल्लाह, इतना इश्क चार्जर से, इतना प्यार।
2: कोई चार्जर से लड़ते, कोई मोबाइल से लड़ते, मैं मोबाइल से लड़ता हूँ लोगों से।
0: अच्छा, आप कहते हो जान मांगो जान हाजिर है, मोबाइल का सवाल मत डालना, ऐसा ही है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बस मैं समझ गया।
2: समाप्त करने वालों के शोर शेर अर्ज करूंगा
0: जी।
2: तुझे नजर की फुर्सत न मिली, तुझे नजर की फुर्सत न मिली, मुझे मन बेहतर लाइलाज न हो, असीं त मोहबत उते बि बीहारियूं से जिथे मोहबत हुयो। असांजो दोस्त ॿुधी रहियो आहे ज़ैब अली, बिलाल अली साहब ऐं जुनैद अली साहब, फरहान अली साहब, ताहिर अली साहब, सभिनी ॿुधण वारनि सोशल स्टेशन ते जंहिं जंहिंजो आवाज़ असांजो हली रहियो आहे, सभिनी खे दिलि जी गहिरे सां ख़ुशि आमदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।
0: ओ माय गॉड, ये दोस्तों को साफ साफ कौन करता है? ये मेरी कैरियर की फर्स्ट कॉल है जिसमें दोस्तों को आप साफ कर रहे हैं। सदके जाऊं मैं ऐसी दोस्ती के भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आज लगता है मेरे हैरान होने का दिन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो। वालेकुम सलाम नाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा तमा केर
3: जी। नमस्कार जी, तो पीर से लाग करे को नाज गुलता जो शो बुदो का काफी बेहतरीन शो आ, शो थोरो करे वरी गायब शो था थी वजो।
0: मैं गायब नहीं होती हूँ भाई, मैं 5 बजे ही घर जाती हूँ, ये इल्जाम मत लगाए। आपके चैनल वाले मेरी आवाज़ बंद कर देते हैं, मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती है।
3: भाई आपका प्रोग्राम आधा घंटा चलता है और चले जाते हो, एक तो आपका प्रोग्राम और आप करती थोड़ा टाइम हो।
0: मैं 2 घंटे प्रोग्राम करती हूँ, वो रिजवान साहब सिर्फ 1 घंटे मेरी आवाज़ बर्दाश्त करते हैं, इससे ज्यादा वो कहते हैं आप जो है ना ज्यादा मत बोलती हैं।
3: नहीं नहीं, औरतें जो भी बोलती हैं, औरतें अच्छा बोलती हैं, मर्द कुछ बोलना नहीं होता, वो भी बोल देते हैं।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ब्रांडेड प्रोग्राम जब तक चल रहे हैं तो फिर ये तब तक चलेंगे जब तक ये डील है, ठीक है? जैसे ही डील कंप्लीट होगी तो हमारा प्रोग्राम दूसरे घंटे में भी आप सुनेंगे। टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे?
3: मेहरबानी कर
0: आप अपने दोस्तों को याद कर लें, यहाँ 3:30 हो चुके हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है, ठीक है?
3: आप दोस्त आरजे रुखसार को सलाम, आरजे नाज को, आरजे न्या खान को, तमाम सुनने वालों को सलाम, और आप भी बहुत खुश रहो, हमें कोई नूरजान का गर्मी गाना सुनाओ।
0: गमगीन गाना तो मैं 4 बजे के बाद गम ताज़ा करती हूँ, आप होते ही नहीं उस टाइम, नेट पे सुन लेना, नूरजहां प्ले करूंगी, ठीक है?
3: गमगीन नहीं, मैंने कहा को गजब का ऐसा कोई तो प्यार का रोमांटिक गाना, सुबह ने दे दी आपको मेरे गानों तो बुधा खुशी जो।
0: ठीक है ठीक है, 4 PM का पोए तमा के नूर जहाँ जो होता है, तो जहाँ पर हमने जो है छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब जाना है और तक और इस ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की स्मेल खत्म करने के लिए पानी का एक कप लें, उसमें 2 से 3 कतरे लीमू की एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर इसे इस पानी को ब्लेंडर में ऐड करें और 30 सेकेंड चलाएं ब्लेंडर को। उसके बाद वॉश कर लें। इसके बाद जो है ब्लेंडर से लहसुन अदरक की जो स्मेल आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी और ब्लेंडर में जो है खुशबू मतलब के चमक भी जाएगा आपका जो ब्लेंडर है वो।

0: रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: गलत हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से आपकी राय जानने के लिए आपकी कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। आपने डायल करना है 03136165688। कॉलर्स की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, बेरमा गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास कातड़ी के खानों पर आया।
0: क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: पेड़ घने बागी सियासत के हवाले से कहें से झगड़ा की लाए।
0: चले ठीक हो गया था, बहुत शुक्रिया आप शाम के प्रोग्राम हुए।
1: आप फिर थी सके तो बोल जो वटी तो रखा जे कदे थी सके टाइम मिले थी कलाम जरूर प्ले कर जो मुझे फरमा।
0: ओके आई विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आर सेल फोन के चार्जर पे भी घरेलू लड़ाइयां होती हैं घरों में अक्सर, बहन भाइयों की आपस में, फैमिली मेंबर्स की। आपने क्या सोच के मेरे मोबाइल के चार्जर को हाथ लगाया? मोबाइल का चार्जर नहीं हो गया जैसे खुदा ना खास्ता कोई डायमंड हीरा हो गया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अभी।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: मोबाइल जो पाए चार्ज न हों अचानक घर पहुंचे जो कुछ मोबाइल लगल हों मीटर घुमी तो बिल्कुल इंसान काटी पवे मुझे मोबाइल बंद रहे तो छो लगा मुझे चार्ज।
0: तो लगता है आपको बहुत तजर्बा है इस वाली लड़ाई का।
1: हाँ बिल्कुल तजर्बा है, पा इन झगड़ो कदो आया चार्जर को।
0: चले ठीक है।
1: हाँ जो अभी चार्जर ही तक गाल बुधा न चार्जर एक महंगाई दो लोग महंगा दिया वरी लोकल जी मू हूं वो चार्ज कहना उन मोबाइल उन्होंने फोन चार्जर जी मोबाइल हलो को खराब थी कावड़ लगन।
0: अच्छा मैं समझी थी ये मसला मेरे साथ है, आप लोगों के मोबाइलों में भी ये वाले मसले होते हैं। ओके ठीक हो गया। आप तो
1: मोबाइलों में चार्ज मोबाइल में कोई मोबाइल हलाई तो किलो थी
0: ये काम की बात आप समझदार हैं, इसलिए आपने ये नुक्ता बताया और वैलिड नुक्ता बताया। बहुत शुक्रिया अदा आपने हमें ज्वाइन किया। जल्दी से दो से तीन दोस्तों के नाम लेना, 10-15 नाम लेने की जरूरत नहीं है। हलो ठीक है आदा मेहरबानी तवाजी। ओके और जनाब आप बताइए पाकिस्तानी आवाम किस बात पे लड़ती है? आवाम की बात हो रही है, घर में तो चलो चार्जर्स को लेके लड़ाई होती है, गली महलों में भी आपने नोट किया होगा ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फसादात हो जाते हैं और कभी कभी वो लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये बताना है आपने मुझे, ठीक है? अवामी लड़ाई की बात हो रही है, घरेलू लड़ाई को एक साइड रख के अवामी लड़ाई पे बात करें। नेक्स्ट कॉलर की जानी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: आप ठीक है? आप
0: अल्लाह का शुक्र। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
1: अभी मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम सियासत पे लड़ती है।
0: गली महल्ले में जो

0: क्या होगा ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फसादात हो जाते हैं, और कभी कभी वो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये बताना है आपने मुझे, ठीक है, अवामी लड़ाई की बात हो रही है, घरेलू लड़ाई को एक साइड रख के अवामी लड़ाई पे बात करें। नेक्स्ट कॉलर की जानी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम,
1: आप ठीक है?
0: अल्लाह का शुक्र। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
1: अभी मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम सियासत पे लड़ती
0: है। गली महल्ले में जो लड़ाई होती है वो भी चार्जर्स पे होती है?
1: घरों में तो आप जरूरी का खाने को है।
0: अदा क्या कहेंगे टॉपिक के लिए? वालेकुम अस्सलाम, अदा वेलकम कहेंगे? कौन बात कर रहा है?
2: अभी लड़का
0: वेलकम कहेंगे, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे आप?
2: अभी चार्जर है और भोपाल में खड़ी वाला है, चार्जर मुझे उतार दे गए, चार्जर मुझे गुम थी वाला भी ना। तो
0: ओ माय गॉड, आप जो है दुआ करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप ना जज्बाती होके दुआ किया करें। मैं अक्सर जब भी दुआ करती हूँ ना तो इंशाल्लाह उल अजीज अल्लाह ताला सुनते हैं। चलें, मैं भी दुआ करूंगी आपके हक में कि आपका जो चार्जर लेके गया है वो चुपचाप से वापस रख जाए। अगर वो बता के रखेगा तो शायद लड़ाई हो जाए। ठीक है आदा, मेहरबानी, थैंक यू। ये इतनी गलत बात है ना, आप किसी की चीज उठा के चल दें। वैसे ये पाकिस्तानी अवाम है, इसका कोई हाल नहीं है। मस्जिद जो इबादत गाह है हमारी, कितना जो है मुकद्दस मकाम है, वहां से हम जूते उठा के ले जाते हैं। ये तो हाल है हमारे, है ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हम, इनमें से भी अच्छे नहीं है। ओके, विसरे गोठ का अनवर अली मर्यादा भलीकार चौथा तवा के, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आरजे गुलनाज और मैं साहिबा, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आई एम कबीर इरफान मल्ला फ्रॉम दादू, शो इज नाइस। आपका टॉपिक मेरे ख्याल में हर इंसान अपने आप को सही साबित करने में हमारे नेक दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। और आई विल ट्राई मरातब अली, ओके। और ये अली रजा लगा रही है गुड, जाम खान लगा रही से, आपका भी शुक्रिया। गुड पुनू खान पवर का, रुस्तम अली पवर भलीकार, तमा के बी मेहरबानी, तमा जी तमा सके ज्वाइन करो जनाब। ये थे आपके टेक्स्ट और अब हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की जानी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तक खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252578 6।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बेसन जिल की गहरी रंगत को हल्का करने, जिल पर माहौलियाती आलूदगी के बायस जमे हुए मेल कुचेल को साफ करने की तमाम तर खसूसियात रखता है। बेसन यानी चने का आटा कदीम जमाने से उसकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसन खास तौर पर जिल को गहराई तक साफ करने और एक्सफोलिएटर का काम करता है। बेसन सिर्फ ऑयली स्किन की हिफाजत के लिए ही मखसूस नहीं, बल्कि यह हैरत अंगेज तौर पर ड्राई स्किन यानी खुश्क स्किन के लिए भी नहायत बेहतरीन और कारगर साबित होता है। इसका एक बेहतरीन सा पेस्ट बना लें। अब इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ दें, रेस्ट करें। जब ये ड्राई हो जाए तो इससे जो है अपना सादे पानी से अपने चेहरे को जो है वो वॉश कर लें। ये आपकी स्किन से मेल कुचेल को साफ करने और स्किन की नमी को बरकरार रखने में आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और ड्राई स्किन की हामिल खवातीन इस पैक को, फेस पैक को जो है महीने में दो बार जरूर आजमा कर देखें। आप अपनी जिल्द में खुशगवार सी तब्दीली और फर्क महसूस करेंगी। और ऑयली स्किन के लिए बेसन का पैक निहायत ही पुरअसर साबित होता है, जो ग्लैंड्स इजाफी ऑयल पैदा करते हैं। बेसन में उनको जज्ब करने की खसूसियत के अलावा जी इसमें जिल्द को नरम, मुलायम और चमकदार बनाने में भी मावनत करता है। और किसी कीमियाई अज्जा से भरपूर फेस वॉश या साबुन को इस्तेमाल करने के बजाय अगर दिन में दो बार बेसन में चंद कतरे लींबू के शामिल करके इससे अगर चेहरा धोया जाए तो चेहरा निखरा निखरा नजर आएगा। हर और चेहरे पर नुमाया होने वाला जो ऑयल है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। ऑयली स्किन की मालिक खवातीन के लिए निहायत ही आसान फेस पैक बनाने का तरीका कार ये है कि बेसन में थोड़े से चंद कतरे जो है आके गुलाब के शामिल करें और पानी ऐड करके इसका जो है फेस पैक बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आपने इस फेस पैक में अगर आप चाहें तो पानी की जगह मिल्क या दही भी ऐड कर सकती हैं, इससे आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम कहेंगे अपने तमाम सामने को जी अमीर प्रकाश FM88 के लाइव स्टूडियो से आपके साथ आरजे गुलनाज सेगमेंट है कौन कितने पानी में। और इस सेगमेंट में हम पूछते हैं आपसे डिफरेंट सवाल जिनके आप बताते हैं हमें जवाब। तो जनाब आज के सिलसिले का पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? अगर आपको मालूम है सवाल का जवाब, आपने डायल करना है 03136615688। उसके साथ ही साथ आपको बताते चले SMS करने का तरीका, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने MP के लिखना है कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लेकर रवाना कर देना है 8881 पर लाइव कॉल के थ्रू। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए डायल करना है 03136615688। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? ये है हम हमारा सवाल, इसका बताना है आपने हमें जवाब।
1: कोई पागल समझता है
0: मैं तुझसे। ओके जी, और आपने हमें बताना है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? आपकी कॉल्स अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, क्या जवाब है सवाल का? दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? राइट आंसर, बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, और बुर्ज खलीफा ही राइट आंसर है इस सवाल का। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है, किस कंट्री में है, किस मुल्क में है, ये आपने हमें बताना है। सवाल तो पूछने दिया करें, कॉल्स आपकी लगातार कंटिन्यू आ रही होती हैं। लाइव कॉल नंबर है 03136615688। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है, ये आपने हमें बताना है। ओके जी, और आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? भलीकार चाहूं था तव्हां खे। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है, क्या जवाब है सवाल का? अदा उसका आंसर मिल गया, ये वाला सवाल पूछा अभी मैंने। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है?
2: इंटरनेट सार्फीन कितने में कहा?
0: जी
2: बाकी
0: चले जी, कोशिश करें उन लोगों को मौका दिया करें जो एबिल होते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। जरूरी नहीं है आपने हर सेगमेंट में एंट्री देनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ हैं? और जनाब कोशिश किया करें जिनको सवाल का जवाब मालूम होता है उन्हें शामिल प्रोग्राम होने दिया करें। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है अगर आपको मालूम है सवाल के जवाब, आपने डायल करना है 03136615688। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहे हैं? अदा क्या जवाब है सवाल का? दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सार्फीन कहाँ है?
3: चाइना।
0: अरे वाह, दुरुस्त आंसर है, जबरदस्त अदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
3: थैंक यू।
0: ओके जी, और ये वाले जो लिसनर है ना हमारे, ये हमारे लिसनर जो है ना, रियल जो लिसनर्स हैं, ये उनमें से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा किस खेल को देखा जाता है, ये आपने हमें बताना है। ओके, और जनाब आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अदा दुनिया में सबसे ज्यादा किस खेल को देखा जाता है, क्या जवाब है इस सवाल का? ठीक है, बहुत शुक्रिया, जवाब गलत है आपका। और दुनिया में सबसे ज्यादा किस खेल को देखा जाता है, ये आपने हमें बताना है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखिए, एक स्पेस दें, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर दें 8881 पर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
0: अदा वेलकम कहेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा किस खेल को देखा जाता है, क्या जवाब है इस सवाल का?
4: फुटबॉल।
0: अरे वाह, अनवर मरी अदा तव्हां जो आंसर राइट आहे, थैंक यू। بھئی یہ ہمارے لسنر جو ہیں ان کا جواب بھی کبھی کبھی درست ہوتا ہے اور ویسرے گھوٹ کا انور مری ادا تماں جی مہربانی تماں آسا کے جوائن کیو کیا خیال ہے ایک اور سوال پوچھوں آپ لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب میں سوال پوچھتی ہوں تو سوال آئی تھنک مشکل ہوتے ہیں اچھا جی عدیل ابرو بہت شکریہ وی ہیلپ ود نیڈی فیڈ دی ہنگری فش ٹو ادرز اوکے کیپ اٹ اپ کیری آن تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اکثر کہتی ہیں یور چوائس والی فیلنگس آتی ہوگی لسنرس کو جیسے مجھے پوئٹری سن کے پوئٹری شو والی فیلنگ آتی ہے اور لاسٹ میں شو ختم ہو جا جواب بالکل دوست ہے اور اکثر دیکھیں نا آپ کتنی سمجھدار ہو گئی ہیں میرا پروگرام سن سن کے آپ اب درست جواب بتا رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے اور جناب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جو میں روزانہ اس ٹائم بتاتی ہوں تو آپ نے بریک لینا ہے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں
5: ہر پہر

0: زندگی لهر جی اف ام ای تی
1: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहर में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
2: बैंक अलबीब रिश्ता
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिनटन ते
4: वहां जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

वक्त ही कब है हमको याद करने का, तो हम भी तुमको बता देंगे कि बहुत मजबूर हैं हम भी, बहुत मसरूफ हैं हम भी, हमें भी काम है कितने हैं। तब हम आंखें ना खोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे, सुनो हम नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज हैं तुमसे।

मैंने पूछा कैसे हो, मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही, अंदाज वही या फिर इसमें कमी कोई, हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा, मैं बिछड़ी मजबूरी थी, कब मंजूर मुझे ये दूरी थी, साथ हमारा कब छूटा है, रूह का रिश्ता कब टूटा है, आंख से जो आंसू बहते हैं तुमको खबर है क्या कहते हैं, मैंने कहा आवाज तुम्हारी आज भी है हमराज हमारी, फूल वफा के खिल जाएंगे, फूल वफा के खिल जाएंगे, एक दिन फिर हम मिल जाएंगे, एक दिन फिर हम मिल जाएंगे। और वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेन को जी अमीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से, आपके साथ आरजे गुलनाज, आर जनाब अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त है। आपकी SMS भी शामिल प्रोग्राम करते चले, अक्सा कहती हैं गुल समझदार आप बोल रही हो, गुल शो सुनते हुए हैंड फ्री लगी होती है मोबाइल, अगर हंसती हूँ घर वाले बोलते हैं कि क्या पागल हो, बिला वजह हंस रही हो गुल, मैंने बोल दिया अम्मा गुल बोल रही है, नेट ऐसे तंग करता है जैसे सास बहू को तंग करती है, ये मेरी भाभी भी बैठी हुई थी वहीं, शुक्र करो आपकी पिटाई नहीं हुई है। कभी कभी हमारे मॉम्स जहाँ बैठी होती हैं उनके आसपास ऐसी जो है तशद्दुद वाली चीजें मौजूद होती हैं और उनका निशाना भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो बॉलर की विकेट पे बॉल दे मारते वक्त भी नहीं होती जितनी हमारी अम्मा कोई चीज उछाल दे हमारी जानिब, ऐसा ही है ना।

एक दिन आदमी ने अपने बेटे को समझाने के लिए एक शीशे के सामने खड़ा करके पूछा, बेटा शीशे में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा दूसरी तरफ लोग नजर आ रहे हैं। फिर बाप ने उसे आईने के सामने खड़ा किया, पूछा अब क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा मुझे अपना चेहरा नजर आ रहे हैं। बाप ने कहा, देखो बेटे ये दोनों ही शीशे, एक पर चांदी का मलमा चढ़ाया गया है तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है, दूसरे पर कुछ भी नहीं चढ़ाया तो इसमें से तुम्हें दूसरी तरफ के लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सिर्फ शीशा बनकर रहोगे तो तुम्हें दूसरे लोग नजर आते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने आप पर सोने या चांदी का मलमा चढ़ा लिया, आईना बन जाओगे, लोग तुम्हें नजर आना बंद होंगे, सिर्फ अपना आप नजर आएगा, और जब अपना आप नजर आएगा तो अपना आप नजर आने से इंसान में तकब्बुर बढ़ता है। हमेशा शीशा बनकर रहना ताकि लोगों के दुख दर्द गम और तकलीफें तुम्हें नजर आती रहें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, गर्मी का मौसम है, बहुत से परिंदे आपके घर की मुंडेर से छत से गुजरते हैं, कोशिश किया करें दाना और पानी किसी बर्तन में रख दिया करें, और उसके साथ ही साथ कौआ जो है वो बाजरा नहीं खाता, बारीक छोटे छोटे दाना है वो नहीं खाता, कोशिश किया करें रोटी के टुकड़े उसके लिए रख दिया करें। ये वही बहुत छोटी सी नेकी है जो रोजे मैशर आपके जब तराजू का पलड़ा नीचे की जानिब झुकने लगेगा, ये वाली नेकी जब उसमें डाल दी जाएगी तो वो बहुत भारी हो जाएगा। तो ये जो आपकी छोटी छोटी सी नेकियां हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी मजबूत चेंजिंग्स लाएंगी, वो मजबूत चेंजिंग आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देंगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में है जिंदगी का मकसद और उनके काम आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह अजीज, जिंदगी ने दिया साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे होनी है मुलाकात, और कोशिश कीजिएगा इस ईद कुर्बान पर अपनी अना जिद नेगेटिविटी तकबूर घुमंड को मिटाएं, इन तमाम अशिया की कुर्बानी दें जो आपकी कुर्बानी को रब की बारगाह में मकबूल होने से रोके हुए हैं। जब भी कुर्बानी करें फर्स्टली आपकी तरजीह होनी चाहिए जरूरतमंद। फ्रिज में गोश्त प्लीज, बहुत से लोग जो है फ्रिज में गोश्त भरने के लिए कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की डेफिनेशन उसकी मीनिंग समझें। ये असली हकदारों के लिए होता है। अस्मा आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और ये असली हकदारों के लिए कुर्बानी की जाती है, मुस्तहिक लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिएगा इस बार ईद कुर्बान पे आप सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए कुर्बानी कीजिए। अगर आपके अपने मिलने वाले आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे खफा हैं तो भी अना को मकदम नहीं रखिएगा, कुर्बान कर दीजिएगा वो तमाम नेगेटिविटी जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी लाएगी। और आई होप कि आपकी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल हो, उसके असल मकसद को पा जाएं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह शब 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस इवनिंग।

0: Треба тунеги. FM Network पर
1: दोस्ती के नाकाम शिकस्त करार लागापन के वधिक मजबूत बयान ते इतफाक शी जिनपिंग चयो त चीन पाकिस्तान सां दोस्ती के घड़ी अहमियत दे थो विचोभर में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदार सहारा जोगो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान चीन खे पंहिंजो एतमाद जोगो दोस्त समझे थो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीनी हम मनसब सां बि मुलाक़ात कई ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुख़्तलिफ़ वाइदनि ऐं यादाश्तनि ते सहियूं बि कयूं वयूं ईरान अमरीका सां जंग जे ख़ात्मे लाइ शुरूआती फ्रेम वर्क ते इतफ़ाक थियण जी तस्दीक करे छॾी ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि शुरूआती एमओयू ते पहुचण जो मक़सद ईरान ऐं अमरीका में मुआदे जे वेझो पहुचण नाहे फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे आबराए हुर्मुज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे फ्रेम वर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं ईरान सां मुआदो मुकमल तौर ते तय नाहे थियो असांजो मुआदो ओबामा वारे मुआदे खां उबतर हूंदो मुआदे खे अञा कंहिं ॾिठो नाहे न ई कंहिंखे नुक़्तनि जी ख़बर आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त नाकाम माण्हुनि ख़राब डील नाया कंदो परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो त ईरान सां डील ते कम हले पियो थी सघे थो ईरान सां अॼु कंहिं मुआदे ते पहुची वञूं आबराए हुर्मुज़ खोलियो वञे वक़्त तय करे एटमी मामले ते ॻाल्हियूं कयूं वञनि

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ट्रंप समूरन मुसलमान मुल्कन का इब्राहिमी मुआहदे में शामिल थियण जो मुतालबो करे छड़ियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त इब्राहिमी मुआहदे ते सही जी शुरुआत सऊदी अरब ऐं कतर खां थियण घुर्जे। बाद में बिया मुसलमान मुल्क बि लाज़मी तौर मुआहदे ते सहियूं कनि। ईरान जी अमरीका सां मुआहदे बाद इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत एज़ाज़ हूंदी। तहरान सां मुआहदो न थियो त पहिरियां खां वॾी ऐं ताक़तवर जंग थींदी। मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तान जी फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद, कतरी अमीर, यूएई जे सदर ऐं मिस्री सरबराह सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी आहे। तहरान सां मुआहदे लाइ पुरोमेद आहियूं।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी चीन जे सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। बितरफ़न लाॻापन समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। चीनी सदर पारां पाक चीन दोस्ती खे नाक़ाबिल शिकस्त करार। लाॻापन खे वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़। शी जिनपिंग चयो त चीन पाकिस्तान सां दोस्ती खे घणी अहमियत ॾिए थो। विचोभर में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदार सारा जोॻो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान चीन खे पंहिंजो इतमाद जोॻो दोस्त समझे थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हमनसब सां बि मुलाक़ात कई। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ऐं यादाश्तनि ते सहियूं बि कयूं वयूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी बि चीनी वज़ीर आज़म सां गैर रस्मी मुलाक़ात।

ईरान अमरीका सां जंग जी खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जी खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सद ईरान ऐं अमरीका में मुआदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। अब्दुल्लाह हुरमज़ वारो मामिलो साहेली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुरमज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4 की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।